0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की।

0: विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
1: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार ₹5,00,000 तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे

0: निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान

0: पाकिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा, फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today.

0: ngaje akash finally ne ishunji tain ka do chu chu usku son to ka sa ta to su cha pegi sting ne la dar sana na sul sana ja
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

0: और मुझे यकीन है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उससे इंडिया और मंगोलिया के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इन संबंधों को कैसे और मजबूत किया जा सके।
1: Nubra yuljong sananga dang during scoring spain namze rings la logodi jabstos kun manga chen yot khan tang mimang kun la logodi jabstos kun barchat met pathop chuk che si thablam gun score la trozur da che la rzonspon mukul beniwalis delot khakur par pon bogun tang yam po sos pa ji boda za te nok sos pe nanga sdm jingme draftan is de pon jon ba zur ba chring ang chuk lok shuk las kung tang lare de khakur pagun tang hundar tang diski de goba gun thu zaza tenok etus or jonspon is handelot khakur pagun la yuljong se ka nasa gun nanga lok shuk sma ar gozdom charuk yang ka nasa gun nanga lok shuk se iltani zo gun la yerges tang gozduk te chamis korla jipsal argyu zaches la ka aspela zaza tenok ina tu la kong is man kang tang jan ar gozdom khakchan yot khani nasa gun nanga logo di jabstos kun barchat met pa thop chuk chez la labja asala jate no khyang khangpa guni nanga ar gozdom asang manga lokshuk song kolin yot khan guni zikstox lenche lang ka aspela jate no ladakh ujung ngazde shishkyong jon ba vk saxenas deregulation 2.0 nanglo ga gyagare kash nasa jignyang doctors kun ladakh laskyo te chaglas jat nang dikche sin nangwa sala jate no jungi teams nangshin doctors gunla kar gelkha ya ujung ngazde nanga chaglas zadot yod nang tena gelkha gi medical council ya dental council inanga registration zad go sanok shuru innang utilada sananga medical council tang dental council tarung madu ba yochi specialist te national medical register inanga registered sonste yod khan doctors kunlang ladak sananga chaglas zad nang dikche sinang asala zatenok kakhyabina shadazat khan nang shin ladak siul jong tang mix ali sacha thagring si gamyul kuni nanga doctors skonmo yot khan bo zix te e thakchat po len tenok shuro shizin dropati murmu sidang gelsani daily shizini yugdang se ka jatgo ji gis kap sangya gari smagde so se pun botang khotom gunla yuli shunske be thoka palsal tapo stana jat khan gunla glentry awards kun sala jatenok itu shizini kirti chakra अर्दुन वीर चक्र चोंगातंग शौर्य चक्र निशूर सरगु सलाजा तेनोक जदगु स्कप्स श्रीजिन जोन बसी पी राधा कृष्णन श्रीलोन नरेंद्र मोदी तंग शुंसके बिलोन पो राजनाथ सिंह थे तेर सोजुंग इलोन पो गुंतंग स्मक्स दे सो से पुन बो छिन मगु नि जुक्ते पिन जरो दृग ने पड़ला मध्य प्रदेश सी इंदौर नंगा ब्रिक्स यूलगुनी एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप बी यक सुमित सोसपा सोसन जिक्तानो ई सोसपा बो जुनिल जे सेस चुगनीज ने पड़ला सोसेशन ब्रिक्स यूलगुनी सोनम लस्का गे लनपो गुनी सोसपे खाचे गुचुला सोसन जिक्तानो सोसपे रिंग्स ला सजिम बदगे तंदेलते यूल तंग जमनिंग स्टील दनी तोनसन सोसे का टोदुर अजाचे सी रेवानो University of Ladakh nanga ngistong isur tar rukor sabduni academic session ifia post graduate lobsan asose nanga admission lenches la samarth admission portal junitses achonga chukpa phese porche jano thukdo diot khan reltos pagunis junitses achonga chukpa samarth admission portal argute online registration da tupche jano yang terting ne admission ifia tu sat sketches manjurok le luntin kang gyu te ladakh si nachul gun hatog chusot or gu ngimi chizot ngis tang skarma khap chung anga phito go chizot nga tang phito go chizot or dun tang skarma chong guni ka sanchez la pulin jitano mimans kuni ladakh si nachul gun facebook youtube tang x kuni kang air news le gyu te ang san thup che jote nok akashwani leni tar nachul ton

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म लुई डिक्रोना कसता लता मंगेशकर तंग ठोपा गुनी सलखनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म लू सनचात

फल मेलो ही टिक्र मना था संगी चरंगे जो चेते का वही सिकंदर फल मेलो उदित नारायण तंग साधना सरगम निस्काने इस सनजत मशीन सुमजत खनुलों श्रीकनिन पिन जतिन ललित फलमलुई टिक्र में स्तिंग जुग पिका कसता किशोर कुमार सलखने मेरे जीवन साथी फलमलो सनजात

0: फिल्मले टिक्रे मेस्तिंग जुक पेका दासंग इशरंगे किशोर कुमार सलखाने मेरे जीवन साथे फिल्मलो सनजज नचे आकाशवाणी लेने जुंजिकताइन हतो छचो उछचो सो तो कासता निमेसो चुके सुपा एफएम गोल्ड दिल्ली सनजज
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलू और वीपी शिवा कोलुंदू तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए

0: पद की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong and self-reliant India. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that dedication and service spirit have been the government's invaluable capital for nation building. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Plot Management System LPMS today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Union Home Minister paid tributes to Lord Birsa Munda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said, Lord Birsa Munda sounded the conch of freedom against British rule through the Ulgulan movement, calling him the immortal symbol of tribal pride, patriotism and cultural consciousness. The Home Minister noted that Birsa Munda organized tribal society

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और दाम्बुला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु

0: अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अधिक ब्यौरे के साथ है हमारे संवाददाता।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी और हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इजराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के बाद अपने हमले रोक दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेड्रोस अधनोम घेब्रेसस युगांडा के दौरे पर हैं। वे कांगो में जारी इबोला प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने युगांडा में संयुक्त राष्ट्र टीम के साथ बैठक कर समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से भी मुलाकात की। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मेक्सिको की खाड़ी में सोमवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका में फ्लोरिडा के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलीपींस के दक्षिण मिंडानाओ द्वीप के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मिंडानाओ में आए भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत का फिलीपींस के लोगों और सरकार के साथ पूरा समर्थन है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती।
3: डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए टॉस जीत

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 10:31 और 13 सेकंड हो चुके हैं और ये वही सफर है जिसमें आप हमें अपने पसंद के गीत भेजते हैं और हमें कोशिश रहती है कि हम उन्हें आप तक पहुंचाएं। तो कहां पर भेजनी है अपनी फरमाइश हमें पहले ये बता दूं, 9868687533 ये वो जादुई व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें लिख सकते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं अपने नाम और शहर के नाम के साथ। नंबर फिर से बता दूं, 9868686853। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं fmgoldair@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldair@gmail.com। सिर्फ एक ही काम कीजिए, वही काफी है, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, या तो व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल करिए, काफी है, क्योंकि दोनों जगह पर अगर सेम नाम सेम मैसेजेस दिखाई देंगे तो फिर मैं बार बार एक ही नाम में घूम कर रह जाऊंगी, खोकर रह जाऊंगी और बाकी सबके नामों को शामिल नहीं कर पाऊंगी। और आपका नाम ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैं दोबारा नहीं लूंगी चाहे आप 10 मैसेजेस भी कर दें, तो इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ एक ही मैसेज करें, काफी है। और फिलहाल कुछ मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं तो इन्हें

कर लेते हैं, हमें किस किसने लिखा है चलिए देखते हैं। बिहार स्टेट बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा नाज अंसारी ने हमें मैसेज भेजा है। इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बीबी अंसारी और डब्ल्यू अंसारी ने हमें मैसेज किया। और हमारे पास विजय नारंग नन्हे पहलवान का बाजार सीताराम दिल्ली से, उग्र सिंह यादव शकुंतला यादव गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, ये मैसेज हमें भेजा है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने। और सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजानिया ने। सिरसा हरियाणा से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने महाराष्ट्र नांदेड़ से हमें लिखा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ये लिखते हैं हमें मजरू कटीला से। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने नेपानगर मध्य प्रदेश से। कृष्णा बाल्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना का मैसेज। और नबी हसन, अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनब और यशव का मैसेज हमें मारहरा दरवाजा एटा से। सिकंदरा राव से मुनीम मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन का मैसेज। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक का झज्जर हरियाणा से। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सन, आजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम अदीब का हमें सहारनपुर से गांव कुमार हेड़ा से मैसेज पहुंचा। मल्ली मारान से नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती का हमें मैसेज मिला सुफियान के साथ। और संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन सरथना मेरठ से लिखते हैं, आदि जैन, अंश और भव्य के साथ। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का मैसेज। बिहार दोबारा से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, रजान अबान और पूरे अब्बासी परिवार का मैसेज। अपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से अरविंद कुमार, गुड़िया, भाव्या, निवेश और नियति का मैसेज हमें मिला है। कहां से ये तो नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। पलीला अंसारी, अस्मनाज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान का पुराना तालाब टुमराव से मैसेज हमें पहुंचा। और ये मैसेज हमें लिखा है लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज ने जेल रोड दिल्ली से। और अहमदाबाद से हमें परवीन अंसारी, हेमा जाटव, प्रमिला और प्रवीण कुमार वर्मा का मैसेज मिला। और ये है मोहम्मद शफी अंसारी, सोनम अस्मा का मैसेज बिहार स्टेट डुमराव से। राजकोट से अजिता पॉल और प्रमिला पॉल का मैसेज। श्रोता रघुवीर नगर से लिख रहे हैं हमें दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज। और डॉक्टर सोनम, सना और डॉक्टर अदीबा का चमन पार्क दिल्ली से मैसेज। रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव शमोरिया का मैसेज हमें मिला है। और जेल रोड जालंधर से भी इनमें से कुछ लोग लिख रहे हैं। इसके अलावा हमें बीबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू और चंद्र इंदिरा विहार दिल्ली से लिख रहे हैं। चंद्रनगर से आशु खान और निशु आयशा खान का मैसेज। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का मैसेज। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण का मैसेज भी हमें पहुंचा। और हमें लिखा है राजेंद्र सिंह ओबराय, पिंटू दीवाना ने पंखा रोड जनकपुरी से। शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता कल्पना ताई लोखंडे का हमें मैसेज पहुंचा महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ। और ये मैसेज दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ से शोभापुर गांव से हमें लिखा। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश पूरे संघई परिवार का मैसेज। बिट्टू भाटिया, रीटा और रजत भाटिया मयंक के साथ हमें झज्जर हरियाणा से लिख रहे हैं। सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर का डाबकी रोड अकोला से। और हमें मिला है ये मैसेज कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा का मैसेज। साथ ही मुकेश बंसल, अंकित, भावना, अवनी मित्तल, सौरभ, वंदना, वंश और विहान गुप्ता का साहिबाबाद से। और सुरेश, सोनू, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, बलवीर सिंह और मोहिनी ऋतिक का मैसेज हमें दुलापुर उत्तर प्रदेश

से मिला है। अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और जयराम खोरवाल का उत्तम नगर से मैसेज दीपांशु खोरवाल के साथ, और प्रवीण माली, मीना माली का बड़वाह कंवर कॉलोनी खरगोन एमपी से, और सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कनवासरा, विक्रम कनवासरा, गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान से लिख रहे हैं। सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हिरमन, राहुल नगर अमरावती से लिख रहे हैं, और ओम प्रकाश दिगचंदानी ने ग्रेटर कैलाश दिल्ली से लिखा है। चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का जमशेदपुर से मैसेज, गुरमीत सिंह नेता ने साउथ एक्सटेंशन से, दीपक ज्योति और सक्षम शाखे का जिला एटा उत्तर प्रदेश से, विकासपुरी से इसके खन्ना ने हमें लिखा, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से, और प्रकाश गोगिया ने भी दिल्ली से। बाकी बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंच रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश एकताप का मैसेज, साथ ही मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका का मैसेज राजस्थान से, श्री गंगानगर से, और सपना बोकोलिया, रुद्राक्ष बोकोलिया और ज्वालापुरी नांगलोई से हमें लिख रहे हैं। पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंचे हैं। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का दिल्ली से, क्या करें बहुत सारे मैसेजेस हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किसके मैसेज शामिल करूं और किसके नहीं करूं। वेल, अभी जो मैं गीत शामिल करने जा रही हूं उसकी फरमाइश हमें भेजी है बिहार स्टेट डुमराव से मोहम्मद शफी अंसारी, सोनमवली, अस्मावली और राजकोट अजिता, राजकोट से अजिता पॉल और प्रमिला पॉल ने, और इसके अलावा हमारे पास इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, ईश्वर जहां, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव चमुरिया ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फकीरा फिल्म से, आवाज लता जी की।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग।

0: मोदी सरकार के सौजन्य से।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये सफर है दिल का मेल बॉक्स का, जिसमें आप हमें भेज रहे हैं अपनी फरमाइशें। 10:48:25 हो चुके हैं, जल्दी से नाम शामिल कर लूं किस किसने हमें लिखे हैं मैसेजेस। हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा ने भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और पिलाईगढ़ से हमें लिखा है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन ने। और इसके साथ साथ अनिता मुखी, सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से मैसेज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डब्बू का मैसेज, और ये हमें लिखा है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मैसेज, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज का मैसेज, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, संगीता कंवर, दातार सिंह शेखावत राजस्थान सीकर से हमें लिख रहे हैं, और भवानीगढ़ से हमें राजेंद्र कुमार सचदेवा ने मैसेज भेजा, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा का मैसेज, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान का मैसेज, और इसके साथ साथ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष मुहिरकर, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, वीएस नाहवकर ने हमें नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से लिखा है, इंदिरा नगर भवपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज, और राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी और पुष्पेंद्र कुमार दूधी का गांव फ्रांसी हिसार से, और इसके साथ साथ हमें गांधी चौक बाड़मेर राज से लिखा है अपलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने, डागरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, और साथ ही ये मैसेज हमें लिखा है विपिन नेहरा ने, कहां से नहीं पता, और ये साथ में हमारे पास प्रकाश चंद शर्मा बाजार सीताराम दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान का मैसेज, राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से, और ये है मैसेज किसका, मोहम्मद कैफ बाल और बांगरा सिवान बिहार से हमें लिख रहे हैं अकबर हुसैन के साथ, और ये मैसेज आसिफ सैफी का मेरठ से हमें लिखा है, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सुधाकर राजे, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत प्रणाली, सानवी और कल्पना ने जाफराबाद से, और साथ में भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पुरुष का मैसेज, वाइट फील्ड बेंगलुरु से, सतप्रकाश गोयल का, गोयल के साथ रोहिणी दिल्ली से, रवि, लता, प्रिया, वीनू का भिलाई छत्तीसगढ़ से, विवेक वर्धन ने डॉक्टर पारुल सिंह के साथ मेरठ से लिखा है, देहरादून से आलोक पवार और मिनी का मैसेज हमें मिला है, और श्रीपाल गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखा है, अशोक कुमार विद्यार्थी ने मयूर विहार दिल्ली से लिखा है, और संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत भारत का मैसेज हमें मिला है, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गुराया, जालंधर से लिख रहे हैं ये, और साथ साथ हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान और फैजान खान का मैसेज गंज टुंडवाड़ा से हमारे पास पहुंचा है, और इसके साथ बहुत सारे रिपीट मैसेजेस तो हमें लगातार मिल ही रहे हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, शुभदीप का मैसेज जिला फिरोजपुर से हमें मिला, और हमें लिखा है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सुनीत कुमार ने खयाला से, और साथ ही ये मैसेज फिर से रिपीट, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम उस गीत को शामिल करते हैं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है किसने, देखें जरा, हाथ की सफाई फिल्म से ये गीत सुनना चाहा है फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीस।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने एच

0: विज्ञापन बी वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjeet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath, Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong and self-reliant India. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that dedication and service spirit have been the government's invaluable capital for nation building. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on par with digital systems already in place at airports and seaports. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Multiple sessions are scheduled to be held today. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agricultural trade and empowering small farmers. On 12th of this month, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On 13 June, the ministerial meeting of BRICS nations will take place. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites like Rajwada, Chappan Dukan, Sarafa and Mandu. Ministry of Coal has notified the Coal Exchange Rules 2026, paving the way for the establishment of coal exchanges in the country to enable transparent and market-driven coal trading. According to the ministry,

तो कहिए, हमारे घुमक्कड़ दोस्त तैयार हैं आज के सफर पे हमारे साथ चलने को? मुझे पता है कि बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे ही तस्वीर का वक्त होता है, जैसे ही ये सफर का वक्त होता है, आप सब अपने अपने कानों को करीब ले आते हैं एफएम गोल्ड के, क्योंकि घर बैठे आपको खूबसूरत जगहों की सैर करने का मौका मिलता है तो सिर्फ एफएम गोल्ड के जरिए। तो चलिए, आज आपको इससे पहले कि ये बताऊं कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं, बता दूं कि 11:38 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस। फिलहाल तस्वीर के सफर में आज हम आपको कहां ले चल रहे हैं, जल्दी से बता दूं। हिमालय में कुछ ऐसी जगह हैं जो आपकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ देती हैं, और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ठीक ऊपर स्थित कुफरी उन्हीं में से एक है। शिमला कभी कभी थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाता है जब सीजन होता है या ऐसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, स्वाभाविक रूप से काफी भरा हुआ लगता है। वहीं कुफरी की बात करें तो ये बिल्कुल अलग महसूस होता है। शिमला का अपना अलग आकर्षण है, लेकिन कुफरी जो शिमला से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, ताजगी और सुकून का एहसास कराता है। खुले नजारे, शांति और प्रकृति के करीब होने का एहसास कुफरी की यही खासियत है। यहाँ अक्सर होटल से ही, यानी जहाँ आप रुकते हैं उसकी खिड़कियों से ही आपको मनमोहक नजारे देखने का आसान मौका मिल सकता है। शिमला में घनी आबादी वाले निर्माण की वजह से ये नजारे अब थोड़े से दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन अगर कुफरी की बात करें तो कुफरी में काफी खूबसूरत नजारे आपको आसानी से मिल जाते हैं। कुफरी शांत, खुला और हिमालय के उस स्पर्श के करीब लगता है जिसे शहरों की भीड़भाड़ से परेशान लोग असल में अनुभव करना चाहते हैं या शहरों में अनुभव नहीं कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी बर्फबारी और एडवेंचर के लिए जाना जाता है। स्थानीय भाषा पहाड़ी में कुफरी शब्द कुफ्र से बना है जिसका अर्थ है झील। जी

तो चलिए आज कुफरी की सैर पर आपको ले चलेंगे, जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में, क्योंकि आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस तस्वीर उकेरेगी आज आपकी आंखों में घर बैठे कुफरी की। तो इससे पहले कि इस सफर में आगे बढ़े, एक गीत सुनते हैं, इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गीत को, और फिर सफर में आगे बढ़ेंगे झूमते गाते।

तो भाई कुफरी की सैर पर निकले हैं आज आप और हम। कुफरी जो है वो शिमला के बहुत करीब है, मतलब शिमला तो हर कोई घूमने जाता है, लेकिन वहाँ क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है वो, और ज्यादातर हर वक्त वहाँ पर लोगों का आना जाना ताता लगा रहता है। कुफरी शिमला से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। कुफरी शिमला और चैल के बीच एक बहुत ही संतुलित जगह है, एक आदर्श संतुलन है यहाँ का। ना तो बहुत भीड़ भाड़ है और ना ही ये जगह बहुत शांत है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना, हवा में चीड़ की ताजी खुशबू और दूर बर्फ से ढकी चोटियों की वो पहली झलक जो बहुत ही रोमांचक लगती है। चाहे आप अनुभवी यात्री हों या पहली बार पहाड़ों की सैर कर रहे हों, कुफरी आपको लुभावने नजारे, रोमांच और हिमालय के अद्भुत जादू से भर देगा। और समुद्र तल से लगभग 2322 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है। कुफरी में हिमालयी दृश्य, नजारे, बर्फ से जुड़ी गतिविधियां और परिवार के साथ मौज मस्ती करना, सचमुच ये सभी कुछ

बहुत ही खास है। और अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में बर्फ के खेल और स्कीइंग, गर्मी के मौसम में शांत हरी भरी घाटियां, कुफरी फन वर्ल्ड जैसे पारिवारिक मनोरंजन क्षेत्र, कुफरी चिड़ियाघर में तेंदुआ और भालू सहित कई वन्य जीवों को देखने का मौका, और नेचर पार्क में पाए जाने वाले जंगली हिमालय वनस्पति और जीव जंतु, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित हिमालय पर्वतमाला के मनोरम नजारे, बहुत कुछ है जो कुफरी में आपको देखने को मिल सकता है। कई यात्रियों के लिए कुफरी शिमला के पास बर्फ की राजधानी है, जो सर्दियों में हल्के फुल्के मनोरंजन से लेकर रोमांचक पहाड़ी ट्रैकिंग तक सब कुछ देती है। तो अगर आप यहाँ जाने का अब तक प्लान नहीं बना पाए हैं तो जरूर एक बार यहाँ जाकर देखिए, कुफरी आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगा। कुफरी घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है ये भी बता दूं, अगर आप गर्मियों में जाते हैं जो कि अप्रैल से जून का महीना है, तो मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से बचने के लिए ग्रीष्म ऋतु सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप इस मौसम में भी जा सकते हैं। कुफरी में इन महीनों के दौरान मौसम सुहाना आरामदायक रहता है, जो इसे देखने लायक स्थलों की सैर, प्रकृति की सैर और बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम बेस्ट बनाता है। यहाँ के नजारे बर्फ से फ्री रहते हैं इस दौर में, इस टाइम पर, और आसमान आमतौर पर साफ रहता है। फोटोग्राफी के अगर आप शौकीन हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये वक्त सबसे बेस्ट है। और अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको क्योंकि ये वसंत ऋतु है और सेब के बागों सहित सभी बागानों में फूल खिलने लगते हैं, जो काफी दिलचस्प और रंगीन होता है, तो आपको ये जो मौसम है इसमें जरूर यहाँ पर घूमना चाहिए। घूमने का सबसे अच्छा मौसम अगर मैं कहूँ तो फोटोग्राफर्स के लिए अप्रैल है। और अगर मैं बात करूँ जुलाई से सितंबर, जो कि मानसून का वक्त रहता है, तो कुफरी में एक अलग ही रूप सामने आता है। पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, घाटियां ताजगी से भरी नजर आती हैं और हवा बहुत ही साफ और स्वच्छ महसूस होती है। हालांकि लगातार बारिश, कोहरे और फिसलन भरी सड़कें यात्रा और योजनाओं को थोड़ा सा प्रभावित कर देती हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों में रास्ते बंद होने की समस्या जरूर आ सकती है, तो आप अगर इन चीजों से परहेज करना चाहते हैं तो ये मौसम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और ऐसी चीजों से आपको डर नहीं लगता, तो फिर आप ऐसे मौसम में यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में शांति और भीड़भाड़ कम आपको नजर आएगी और नजारे खूबसूरत आपको मिलेंगे, खास तौर से बर्फ या फिर पहाड़ों की खूबसूरत नजारे अगर आप देखना चाहते हैं। सर्दियों की बात करूं शरद ऋतु की, तो अक्टूबर और नवंबर ये जो समय है, इस वक्त आप जा सकते हैं। मानसून की तरह कुफरी के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीनों को भी अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन खास तौर से अगर मैं कहूं तो यहां पर इस टाइम पर एक अलग ही आकर्षण होता है। कुफरी में शरद ऋतु बदलते रंगों की वजह से देखने लायक है। कुफरी के आसपास के जंगल शरद ऋतु की प्राकृतिक रंगों से सराबोर हो जाते हैं, हवा बहुत ही ताजी महसूस होती है। और सर्दियों की बात करें जो दिसंबर से फरवरी में होती है, तो फिर सर्दियों के मौसम में कुफरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये बर्फबारी का मौसम है और यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लीजिंग और ताजी बर्फ में खेलने जैसे पारंपरिक बर्फीले अनुभव आप ले सकते हैं। पूरा शहर एक सफेद जादुई दुनिया में बदल जाता है, जिससे ये पहली बार बर्फ का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए खास तौर से एक आकर्षण बन जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सचमुच ऐसी जगहों पर जाना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, खास लगता है, क्योंकि सर्दियों में कुफरी जो है वो बहुत जादुई सा हो जाता है। कुरकुरी बर्फ पर चलना, आरामदायक कैफे में गर्माहट का आनंद लेना और बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारों में खो जाना, जिसे आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे और इन्हें देखते हुए आप कभी थकेंगे भी नहीं। तो कोशिश करिए कि जो आपका बेस्ट मौसम हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उस मौसम में यहाँ पर जाएं। सुहाने मौसम और नजारों के लिए गर्मियों में कुफरी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बेस्ट है ही, क्योंकि अगर आप दिल्ली की गर्मी से थोड़ा सा अपने आप को निजात पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए कुफरी, क्योंकि ये आपको सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडा ठंडा यादगार अनुभव देगा। वेल, अभी तो गीत सुनाती हूँ और उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी कुफरी के बारे में। जुड़े रहिएगा इस सफर में मेरे साथ।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agnivir Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samruddh Bharat. Join Indian Navy.
3: कुफरी के सैर पर निकले हैं आज आप और हम। 11:29 हो चुके हैं और इससे पहले कि सफर का वक्त खत्म हो, कुफरी की सैर पूरी तरह से आपको कराना जरूर चाहती हूं मैं। तो वही पहुंचना कैसे है, सबसे पहले आप ये जान लें। कुफरी शिमला शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लगभग आधे घंटे की ड्राइव पर। यहां बस और टैक्सी उपलब्ध है। शिमला सड़क मार्ग से दिल्ली, चंडीगढ़ और बाकी शहरों से, भारतीय शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। बस सेवा की बात करें तो दिल्ली या चंडीगढ़ से कुफरी के लिए कोई सीधी बस नहीं है। हालांकि आप रामपुर या रिकोंगपेओ के लिए, जो कि किन्नौर में है, इसके लिए आप बस ढूंढ सकते हैं और रास्ते में कुफरी में उतर सकते हैं। ऑप्शन के तौर पर कहूं तो शिमला के लिए बस ले लीजिए और फिर वहां से स्थानीय परिवहन का इंतजाम करके आप कुफरी जा सकते हैं। ट्रेन से अगर आप जाना चाहें तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है और जहां से आप पहुंचने के बाद टैक्सी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। इसके अलावा कालका शिमला टॉय ट्रेन का भी आनंद आप ले सकते हैं, जो कालका से शुरू होने वाला एक दर्शनीय यूनेस्को सूचीबद्ध मार्ग है और आप इसके जरिए भी आनंद लेते हुए यहां पहुंच सकते हैं। बाय एयर अगर आप जाना चाहें तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहां से शिमला जाने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं और वहां से कुफरी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई ये तो हुआ यहां पहुंचने का तरीका। अब आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूं कि शिमला के पास स्थित कुफरी सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो परिवारों, जोड़ों, एकल यात्रियों के लिए रोमांच और शौकीनों के लिए कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है। सर्दियों में बर्फ के रोमांच से लेकर गर्मियों में शांत वन घूमने तक कुफरी पर्यटन में साल भर सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर आप बात करें सर्दियों के मौसम में कुफरी की, सबसे बड़ी खासियत बर्फ से जुड़ी गतिविधियां है। दिसंबर से फरवरी के बीच कुफरी बर्फ का स्वर्ग बन जाता है, जो पहली बार बर्फ का अनुभव करने वाले पर्यटक हैं उनके लिए आकर्षण है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लेजिंग और बर्फ में खेलना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां जाकर कर सकते हैं ऐसे मौसम में। अगर मैं बात करूं कुफरी में घुड़सवारी और याक की सवारी सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय अनुभवों में से एक है और ये सवारी आमतौर पर आपको सुरम्य वन मार्गों और महासूर शिखर की ओर ले जाने वाले पहाड़ी रास्तों से होकर ले जाती है। हालांकि ये पर्यटक जो यहां पर पहुंचते हैं उनके बीच एक लोकप्रिय गतिविधि है, लेकिन ज्यादा शुल्क से बचने के लिए आप लाइसेंस प्राप्त यहां जो संचालक हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, यहां उनका चुनाव कर सकते हैं और कीमतों की पहले से आप जानकारी लेकर यहां जा सकते हैं। इसके बावजूद चीड़ के जंगलों में घोड़े पर सवार होकर कुफरी की सैर का अनुभव हिमालय की एक अनूठी झलक पेश करता है, तो आपको जरूर इसका अनुभव करना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं कुफरी में ट्रैकिंग की, तो भाई ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर के लिए बेहतरीन जगह है ये, जो धीमी गति से यात्रा और प्रकृति की खोज का आनंद लेना चाहते हैं। उन यात्रियों के लिए जो धीरे धीरे देवदार के जंगलों से घिरा हुआ महासू पीक, ग्रीन वैली और आसपास के इलाकों का पैदल चलकर मजा लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, उनको जरूर यहां पर एक बार ट्रैकिंग का अनुभव करना चाहिए। और ये रास्ते ताजी पहाड़ी हवा, शांत वातावरण, प्राकृतिक नजारों, जो कि फोटोग्राफी के लिए बहुत ही खास है, और अलग अलग तरह के पक्षियों को

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: नो, इतक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, इतक दाना।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेज, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: तो भाई मैं आपको बता रही थी कि कुफरी में घूमना कहाँ कहाँ है और क्या क्या है यहाँ पर करने के लिए। कुफरी फन वर्ल्ड कुफरी के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, खासकर बच्चों के साथ यात्रा करने

वाले परिवारों के लिए ऊंचाई पर स्थित ये पार्क दुनिया के सबसे ऊंचे गो कार्टिंग ट्रैक में से एक है और इसके लिए जाना जाता है। गो कार्टिंग के अलावा ये मनोरंजन पार्क, जोरबिंग और एडवेंचर राइड और बाकी ऐसी बहुत सी मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी खास फेमस है, जो कुफरी पर्यटन में एक मजेदार और बहुत ही खास है बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो महासू पीक पर जा सकते हैं, जो कि कुफरी का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ इस क्षेत्र के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ से बर्फ से ढकी हिमालयी पर्वतमाला, जंगलों और दूर स्थित घाटियों का मनोरम नजारा आप ले सकते हैं। और इस चोटी पर एक छोटा नाग देवता का मंदिर भी है, जो इस स्थल को सांस्कृतिक महत्व देता है और इस वजह से यहाँ पर भी पर्यटक ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। कई बार देवदार के जंगलों से होते हुए पैदल चढ़ाई कर सकते हैं आप, या फिर टट्टू की सवारी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सूर्योदय देखना सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है। फोटोग्राफर्स के बीच ये काफी लोकप्रिय है। ग्रीन वैली एक जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। सर्दियों में इसे व्हाइट वैली के तौर पर भी जाना जाता है। शिमला कुफरी मार्ग पर स्थित ग्रीन वैली कुफरी के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले स्थानों में से एक है। गर्मियों में घाटी चीड़ के पेड़ों और खुली ढलानों से हरी भरी हरियाली से ढकी रहती है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी इसे एक और ही सफेद घाटी का रूप देकर बहुत ही खूबसूरत बना देती है। और अगर मैं बात करूं तो खास तौर से परिवारों या ग्रुप्स में जाने वाले लोगों को शिमला से कुफरी की जो छोटी सी यात्रा है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ या फिर ऐसे किसी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ की यात्रा का अनुभव जरूर करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ हिमालयन नेचर पार्क या कुफरी चिड़ियाघर की, तो ये भी अपने आप में एक खास आकर्षण है यहाँ का। यहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। पैदल पथ यात्रा आप यहाँ कर सकते हैं और कुफरी आरामदेह और ज्ञानवर्धन यात्रा के लिए सबसे खास है। और अगर मैं बात करूं बच्चों या बुजुर्गों के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो फिर ये पार्क आपके लिए बहुत ही खूबसूरत अनुभव होगा। यहाँ पर आपको कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल, भालू और अलग अलग तरह के पक्षी जो कि हिमालय प्रजातियां हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आपको ये भी जरूर एक बार अनुभव लेना ही चाहिए। शांत जगह है ये और शिमला के पास पर्यावरण पर्यटन में रुचि रखने वाले परिवारों, फोटोग्राफर्स या यात्रियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। कुफरी में मिले इस कस्बे को भी आप देख सकते हैं, जहां पर कह सकते हैं कि अपने आप में ब्रिटिश भारत की 150 साल से पुरानी इमारतें आपको मिल जाएंगी। तो ये भी अपने आप में एक खास जगह है और ये अगर मैं कहूं तो भूतिया कस्बे के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा भागू की यात्रा आप कर सकते हैं। कुफरी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शांत पहाड़ी गांव है जो अपने विशाल खुले मैदानों, सेब के बागों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। कुफरी की तुलना में भागू में भी भीड़ काफी होती है और ये शिमला के पास शांति, प्रकृति और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुफरी का मेन बाजार आप घूम सकते हैं, जहां पर आप कुछ यादगार खरीदारी करना चाहते हैं जो आप अपने साथ लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऊनी कपड़े, दस्ताने, टोपियां, हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें, लकड़ी से बना हुआ सामान भी खरीद सकते हैं। स्नैक्स यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा मंचिंग का शौक है तो उसके लिए, और गर्मा गर्म चाय, स्ट्रीट फूड का स्वाद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ इंदिरा पर्यटक पार्क है यहाँ पर, टूरिस्ट पार्क जिसे कहते हैं, तो ये भी एक पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ भी जा सकते हैं और ये परिवारों के लिए घूमने के लिए कुछ बेस्ट प्लेस में से एक है। पार्क में बैठने की खुली जगह है, छोटे छोटे कैफेज हैं, घोड़े और याक की सवारी की सुविधा भी है और आप अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। हाँ, अब आपको ठहरना कहाँ है कुफरी में ये जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: तो भाई मैं बता रही थी कि आप यहाँ पर ठहर कहाँ सकते हैं, तो अगर आप कुफरी जाते हैं तो यहाँ पर आपको हर बजट के होटल्स और स्टेज मिल जाएंगे, जहाँ से आपको पहाड़ों का नज़ारा लगभग हर होटल से, हर स्टे से मिलता है, और आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ से कुफरी के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे तो ले ही सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की संस्कृति की, तो लोक कला और संगीत की अगर बात पर आएं, तो कुफरी और आसपास के क्षेत्रों में लोग अपने पारंपरिक लोक गीतों और नृत्यों जैसे नाटी के माध्यम से अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। त्योहारों और मेलों के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, करनाल और शहनाई की थाप पर लोक नृत्य किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों की पारंपरिक पोशाक बहुत ही आकर्षक होती है। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए बुने हुए ऊनी वस्त्र, रंग बिरंगे स्कार्फ और खास तौर से हिमाचली टोपी, जो कि कुल्लू कैप के नाम पर भी जानी जाती है, पहनी जाती है, जो यहाँ की पहचान का खास हिस्सा है। खान पान की बात करें तो हिमाचली संस्कृति यहाँ के पारंपरिक भोजन में झलकती है। कुफरी आने वाले पर्यटकों को स्थानीय धम यानी पारंपरिक भोज, सिडू जैसे कई व्यंजन यहाँ पर चखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप कुफरी में घूमने के दौरान आपको पहाड़ी सिद्धू, जो कि दाल या आलू भरी पारंपरिक स्टीम्ड रोटी है, ये आप चख सकते हैं। गर्मा गर्म पहाड़ी नूडल्स आप टेस्ट कर सकते हैं और स्थानीय मसालों

वाले पहाड़ी मोमोज का जायका भी आप ले सकते हैं। ठंडे मौसम में इनका स्वाद सबसे बेहतरीन लगता है कुफरी, और इसके आसपास आपको कई शानदार स्वादिष्ट और बहुत ही जायकेदार व्यंजन मिलेंगे। सिद्धू, जैसा कि मैंने कहा कि पारंपरिक व्यंजन है, खमीर से बनी रोटी होती है जिसे भाप में पकाया जाता है और इसके अंदर दाल या अखरोट का मिश्रण भरा जाता है। इसे घी और चटनी के साथ खाया जाता है। और अगर मैं बात करूं धम, जिसकी मैंने बात की थी, तो ये भी एक पारंपरिक हिमाचली दावत जैसा लगता है। इसमें चावल, ड्रिंक, राजमा और खट्टा शामिल होता है जो कि आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। चाय पकौड़े का स्वाद लेना मत भूलिएगा। कहीं भी ठंडे में मौसम में आप बैठकर जब मेन बाजार में अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लेते हैं तो कुफरी की यात्रा आपके लिए सचमुच एक यादगार अनुभव हो जाती है। अगर मैं बात करूं देव संस्कृति की यहाँ पर, तो कुफरी की सबसे ऊंची चोटी महासु पीक को स्थानीय लोगों द्वारा महासु देवता का निवास माना जाता है और यहाँ के निवासियों की अपनी देवी देवताओं में अटूट आस्था है। महासु मंदिर या बाकी स्थानीय मंदिरों में पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साहसिक पर्यटन यहाँ की आधुनिक संस्कृति का अहम हिस्सा है। हिमाचल पर्यटन विभाग द्वारा कुफरी में हर साल फरवरी के महीने में वार्षिक शीतकालीन खेल महोत्सव यानी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और इस दौरान स्कीइंग जैसी रोमांचक प्रतियोगिताओं में स्थानीय और विदेशी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश अपने आप में कोई अलग त्योहार का केंद्र नहीं है, लेकिन ये शिमला जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ खास तौर से फरवरी में होने वाले विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आप हिस्सा ले सकते हैं। स्थानीय मेलों की बात करें तो यहाँ पर ये भी बहुत ही खास तौर पर मनाए जाते हैं। हिमाचल के पारंपरिक त्यौहार मनाए जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है यहाँ। इसके अलावा आइस स्केटिंग और स्कीइंग जैसे रोमांचक गतिविधियों का आनंद भी आप इस फेस्टिवल में ले सकते हैं। महासु जातार मई के महीने में ये मेला महासु गांव में दो दिनों के लिए मनाया जाता है जिसे महासु जातार कहते हैं। कुफरी के करीब यहाँ पारंपरिक नाट्य नृत्य और लोक नृत्य, लोकगीतों का, तीरंदाजी, खेल प्रदर्शन का भी आनंद लिया जा सकता है। एक सिपी मेला लगता है यहाँ, सिपी फेयर जिसे कहते हैं। मई में मसा शोभरा के निकट कुफरी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिपू देवता के सम्मान में ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसे मनाया जाता है। बफलो फेयर भी यहाँ पर लगता है। सितंबर के महीने में कुफरी के पास मसर शोभरा में यह अनोखा मेला आयोजित किया जाता है। राज्य स्तरीय शिमला समर फेस्टिवल भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मई से जून के महीने में शिमला में आयोजित होता है जिसमें कुफरी और आसपास के लोग शामिल होते हैं। और कुफरी में अगर मैं बात करूं तो बहुत से त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं जैसे लोहड़ी, माघी, जनवरी में मनाया जाने वाला पर्व फुलैच जो सितंबर से अक्टूबर में फूलों का त्यौहार होता है और खास तौर से ऊपरी क्षेत्रों और किन्नौर शिमला बेल्ट में मनाया जाता है। दशहरा कुल्लू और हिमाचल के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, धूमधाम से मनाया जाता है। अतिथि सत्कार, कुफरी के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मेहमान नवाज होते हैं यहाँ के लोग। और इसके अलावा काफी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, उनका भी दिल से स्वागत करते हैं, तो आपको यहाँ पर जरूर एक ना एक बार तो जाना ही चाहिए। फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद समय रहा तो कुछ और बातें भी होंगी।

तो भैया अगर आप प्लान कर चुके हैं यहाँ जाने का तो पहुंच जाइए, और यहाँ से आपको अगर कुछ खरीद कर लाना है तो कुल्लवी, पश्मीना शॉल आप यहाँ से ला सकते हैं, पहाड़ी टोपियाँ, लकड़ी के बने हुए सामान आप यहाँ अपने घर के लिए ला सकते हैं, ऑर्गेनिक फल और उत्पाद जैसे कि सेब और खुबानी, यहाँ पर शुद्ध सेब के जैम आपको मिल जाएंगे, जूस, अचार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से आप यहाँ खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, हाथ से बने स्वेटर। और अगर आप खरीदारी की बात करें तो कुफरी का मेन बाजार, जहाँ पर आपको बहुत सारा निर्मित सामान मिल जाएगा, हाथों से बना हुआ सामान मिल जाएगा, या फिर लक्कड़ बाजार कुफरी के पास स्थित ये बाजार खास तौर से लकड़ी के बेहतरीन सामान और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ आप जा सकते हैं, या फिर हिमाचल एम्पोरियम सरकारी दुकानों से आप प्रमाणिक और उच्च गुणवत्ता वाली ऊनी उत्पाद अच्छे दामों पर खरीद सकते हैं। तो वही आपके लिए ये जगह किसी भी तरह से निराश करने वाली नहीं है, आप जाएं और इस जगह का अनुभव लें। अगर आप इन छुट्टियों में सोच रहे थे अभी तक कि कहाँ जाएं, क्या प्लान करें, तो फिर कुफरी जो कि बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपको दे सकता है, यहाँ जाना ना भूलें। फिलहाल तो क्योंकि वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है, मैं आपकी दोस्त रेखा, आज ही रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ऐसे नहीं, एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाऊंगी। 11:56:27 हो चुके हैं, पर ये वादा रहा कि फिर किसी रोज किसी और सफर में आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, आप यूं ही खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ऐसे ही अपना ख्याल रखते रहिए। ये प्यारा सा गीत आपके लिए, चलती हूँ, नमस्कार, बाय बाय।

कसता हम किसी से कम नहीं फिल्मिलु मोहम्मद रफ़ी ने सनजत लूर सुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग श्रिकन आर डी बर्मन।

फिल्म लुई डिग्री में नंगा का सता किशोर कुमार ने कैरेवन फिल्म लु सनजत लूर सुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग सिकन आर डी बर्मन

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह।

दक्षिण इज रंगे दिल देखी देखो फिल्म में लू मोहम्मद रफी ने सनाजज लू सुमकन इन पिन मजरू सुल्तानपुरी यंग लू यंग स्टिकन उषा खन्ना फिल्म में लुई डिग्री में नंगा कसता फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म में लू मोहम्मद रफी ने सनाजत लू सुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लू यंग स्टिकन ओपी नैयर

फिल्म लुई डिग्री मिस थिंग जुक पिका कसता आशा भोसले तंग मोहम्मद रफ़ी ने हम किसी से कम नहीं फिल्म लो सनजत लूर सुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग श्रीकन राहुल देव बर्मन।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा
0: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
0: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो अजीत जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा
0: जी। और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है
2: जी।
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
2: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
2: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
4: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
5: आ गए भैया।
4: हाँ।
5: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
4: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम ले

0: कर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
1: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
0: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
1: लो
0: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
2: हर गोविंद भाई,
3: हाँ?
2: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
2: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
2: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: हाँ, अच्छा चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ,
0: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली।

0: तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
1: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
5: अरे
4: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पान लागू।
5: जीते रहो बेटा,
4: अब चलता हूँ।
6: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
4: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं
3: अच्छा?
4: है। अच्छा, राम राम
3: राम राम
4: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोण

0: to 23,203 when reports last came in. In men's cricket, India A were 210 for 3 in 42.4 overs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at Sri Lanka when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हो रहे हैं। पेश है फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सौदागर फिल्म से ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में कच्चे धागे फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार नुसरत फ़तेह अली खान।

प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

अभी आप सुन रहे थे सनम बेवफा फिल्म से गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे सावन कुमार और संगीतकार महेश किशोर। फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए, उदित नारायण, अलका याग्निक और समीर की आवाज़ों में तेरे नाम फिल्म से। गीतकार समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए क्या यही प्यारे फिल्म से ये गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रिया की आवाज़ों में। गीतकार राशिद और संगीतकार साजद वाजिद।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजीला टनल में पेशरफ्त हुई है और वादी कश्मीर नीम लद्दाख के दरमियान फासला कम हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज नई दिल्ली में मुल्की सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। और मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के शहर डम्बोला में 3 मुल्कों की ए सीरीज का पहला मैच भारत ए और श्रीलंका ए के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद के तय अहदबस्ता है। वजीर आजम ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तय सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में काम काज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगम मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिंदुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवेज नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसके फौजी बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के सरहद पार की फौजी सरगर्मी

की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान सभी मौसमों में आमदोरफ्त वाली इस सड़क से फासला काफी कम हो गया है। इस तरह 10 साल से जारी ये ख्वाब पूरा हो गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर इस पेशरफ्त का आगाज किया। ये तकरीब लद्दाख में मिनीमर्ग में टनल के मशरकी पोर्टल के करीब मुनाकिद की गई। जोजिला टनल मुल्क की दिफाई एतबार से सबसे अहम सड़कों में से एक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में छह जगहों पर काले धन को जायज बनाने के मामले में तलाश की कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। इस मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मुलविस है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली नोएडा खत्ते में ये तलाशियां की ली जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता अफराद की कारोबारी दफातर और घरों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले का ताल्लुक आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर संजीव अरोड़ा से है। डायरेक्टोरेट के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर फर्जी GST दिखाई गई। बाद में इस माल को बरामदी माल दिखाकर मुबैना तौर पर नाजायज रकम को दुबई से भारत मुंतकिल किया गया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफी ज्यादा तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजात की तस्दीक करने की बिला रुकावट सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आगाज किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदामात से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत ने इस खिदमात को नई मार्केट तक पहुंचाने में सहूलत फराहम हुई है। बाकी मुल्क की तरह झारखंड में भी आज अजीम मुजाहिद आज़ादी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गवर्नर, वजीर आला, वज़रा और कई दीगर शख्सियात ने रांची में कोकर समाधि स्थल जाकर उनकी गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत बहुत से रहनुमाओं ने भगवान बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया है। उनकी शहादत के दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जुरश, शुजात और खुददारी की अलामत थे और वो इंसाफ में गैर मुतजलजल यकीन रखते थे। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगगिरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज के इब्तदाई मैच में भारतीय टीम ए श्रीलंका टीम ए के साथ जीत के लिए 278 रन का निशाना रखा है। भारतीय टीम की 6 विकेट पर 277 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ए के स्किपर तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है।

0: ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफल

0: पूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो

0: सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियो वेव किलोहर्ट्ज चिक्सतोंग अप चुंगाख सुम यांगना मीटर्स निप्या क्या चुक्याब जी तंग शुजुर्गो यांग एफएम मेगाहर्ट्ज ज्ञानन चिक तंग शुजुर्चिक कांग जे आकाशवाणी लेने जुइन चिक तंगिन निमे छुचो तो निस्तांग पेचा दुका सता निस्तांग स्कर्मांग अपचुंगांग अचुपा लू रिक्सा नजादिन।

प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा। ये लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है, और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं।
1: ina tuzla sojung lhonpo ladak si yulkha so se la thonpo gnika gyangkhung phuches tang lenanga bypass yangna zurlam sarjans dathe jachis thete charji so se kar la sir rulin yot khan tang charji somari gyang khaptas jate।
0: मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूं। लेह में टू लेन पेव शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूं। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी। लेह में टू लेन पेव शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़, 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। फातुला ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर, केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है 8.5 किलोमीटर की, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका डीपीआर भी अंतिम स्थिति में है। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। हम लोग 12 लाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, बाद में दूसरी जो लाचुंगला टनल है वो भी मार्च के पहले उसका डीपीआर बन जाएगा।
1: ई जदगो स्कप्स जम्मू खचुली शिस्क्यों जोन बा मनोज सिन्हा लोनपो चेनमो उमर अब्दुल्ला रांसक्यों सोसपा करगिल इजदेपोन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन एमपी मोहम्मद हनीफा जान इजदेपोन जुर बा टशी गैलसन बीजेपी लद्दाख अट्ठी पा टशी गैलसन खचू तंग NIHDCA लिखा कुर्पा तंग जन डेलोत एजेंसी खाकुरपा गुन जरोग। लद्दाख उजुंग अजदर शिक्षक जोन बा विनय कुमार सक्सेना मंगोलिया एसक्यू तेतनुक यांग थोरिस उलान बटोरी नंगा संगेस शेकेतुबे लोबमार सो निस शारी पुतांग मोगल गी पुई रिंगशल रिम्पोचे जलके जुगदी जदगुनांगा खाकतु सजा चेजनुक स्टिंग ने रिंगशल रिम्पोचे ग्यागारी नमस्मागे नमटू IL-76 नंगा अर्गेलसा न्यू दिल्ली अर्दंडन जुआजा चेजनुक। लद्दाख उजुंग नजदीर शिशक्यों जोन बा वी के सक्सेना डी रेगुलेशन 2.0 नंगलोगा ग्यागारी का नसा जिक न्यांग डॉक्टर्स कुन लद्दाख लस्क्यो ते छखलास जात नंग रिक्चे सीस नंग वासा लाजा तेनो जुंगी थीम नंग जिन डॉक्टर्स कुन ला कार ग्याल खाक या उजुंग नजदीर जिक नंगा छखलास संजादोत योत नंग तेर ग्याल खाक मेडिकल काउंसिल या डेंटल काउंसिल नंगा रजिस्ट्रेशन जात गोसा नुकशरुक इन नंग यूटी लद्दाख से नंगा मेडिकल काउंसिल तंग डेंटल काउंसिल तरुण मडुबा योचिस पे जस्ते नेशनल मेडिकल रजिस्टर नंगा रजिस्टर्ड संस्था खान डॉक्टर कुनलांग लद्दाख से नंगा छगलास जात नंग दिखचे जिस नंग वासा लजा तेनोक काख्या भी नंगा शराजात खान नंग शिन लद्दाख से युलजोंस तंग श्मिक्साली साचा थकलिंग से गमयूल को नंगा डॉक्टर्स कोनमो योत्खान बस जिक्स दे ई थकचात पो लेन तेनोक शरुक। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख नंगा इंगिस्तों इशु सरुख सब्दुनी एकेडमिक सेशन इफिया पोस्ट ग्रेजुएट लोपचन असोसे नंगा एडमिशन लेंचेज ला समार्थ एडमिशन पोर्टल जूनिल जे सेस चौंगा सुखपा फेस दे बोर्चेजनु तुगदो दुद खान रेल्थोस पगुनी जूनिल जे सेस चौंगा सुखपा समार्थ एडमिशन पोर्टल रग्यू ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जा तुपचेजनु यांग तेस्टिंग ने एडमिशन इफिया तुसत स्केचेस मंजुरोग। दृंग नेपाला मध्य प्रदेश इंदौर नंगा ब्रिक्स युलगुनी एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप भी जक सुमित सोसपा सोसन जितानो ई सोसपा बोजुनी जे सिस चुंगिस नेपाला सोसेशन ब्रिक्स युलगुनी सोनम लस्का गलनपो गुनी सोसपे खाक्षिगि छुल्ला सोसन जितानो लेलुंटिन कान ग्युते लदाख सि नचुलगुन खातो चुसोत अरगु इमेज जोत निस तंस कर्मा खम चुंगांगा पितो चुसोत खातांग पितो चुसोत अरदुन तंस कर्मा चोंगुनी का सांचेस लपुलिन जितानो मीमांस कुनिस लदाख सि नचुलगुन फेसबुक यूट्यूब तंग एक्स को निकांग AIR न्यूज लेर यू तंग सान तुपचे जो तेनाक आकाशवाणी लेनी तारना सुल्तान।

0: Eskalaz gun metkanchajes matsatpe motor college kalden gun manga tang thupjes tangyampu skoryangs lang yargyas lepchesinok breakthrough chachang dupches tangyampu ta gyangkhungi laklusi sarjang tang jukstui las gunika stanga shikarte salches tang lasir shulte zujile ka gyangkhung putkan bo chirnang jin lasirina khyong thup pa chuche se thoga ngarshuk tangyampu las adulinji kino itus sarpel pa thuzmi gun tangyampu jalta salinjik sujungi lonpu nitin gatkares isukmola jats
1: दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है स्टेट ऑफ आर्ट है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा कि ये लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं।
0: All Ladakh Central Government Employees Association ethus dejig tsukspi tungshi sunam ngurubi ushkong nanga sojung ye phokse commission gyatpe thipa justice Ranjan Prakash Desai tang thuga jate Ladakh se nanga sojung ye laskhus guni na chakla sa jadin yot khan laschet pa gunla region specific allowances yangna yuljung sikal dan choste thop os yot khan gun salgos molte spaspre jate nok thusdes Ladakh se nanga chakla sa jadin yot khan central government e laschet pa gunla special duty allowance का थेबा टफ लोकेशन अलाउंस सल्चेस हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस ला नंगवा सल्चेस नॉर्थ ईस्ट कैडरी ऑल इंडिया सर्विस AISS पुनबो गुंतांग चोक्स ला बेसिक पे का ग्याथोक ने निशुई छादिका स्पेशल अलाउंस ला नंगवा सल्चेस तंग लदाख से नंगा मीचे भूस्तांग से का रोसुंग छिनमो योतखन भूस्तांग ना बोर्ते HRA तंग जन गोजदुम गुनी पिया लदाख से युलजोंग गंगपे Ladakh se Yuljong Gangpo Y class city khorena burgos molte jua phula jate nok aur Ladakh Central Government Employees Association Thursday thwa Akashwani le assistant director Sonamangchuk CIBSC deputy registrar Sring Choldan tang section officer Sultim Gyatsogun ajuste yoteno Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abiyan Ashulte Lostun Ashchupa Khorkhanish Tsive Nanga Yulgangpe Nanga Lasgul Ashulin Yot Khantang Tsoksla Ayushman Arugya Mandir Sakti Shtona Sika Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abiyan Iskola Miksali Digrim Jigtalik Choa Zate Nog E Digrim Bo Ama Gyur Testing Ne Ame Lasgan Bo Transportan Yampu Choches Tang Ame Khamizde Japstok Gunik Skola Hago Spelches Bo Inok E Digrim Bo Doctor Chesfida Tang Doctor Jingmet Wangchugi Goshkong Nanga Dani Kamsdish Tona Silaschet Paguni Rox Tang Yampo Taldik Chua Zatenuk Mixali E Degree Miscaps Pancheschan Pomo Gui Clinica Stante Antenatal Checkup Gun Zatenuk Itus Pancheschan Pomo Gunla Tus Tusika Antenatal Checkup Choches Kachan Inkan Smankan Tang Kamsdish Tona Sika Tugu Josh Chukches Risk High Risk Pregnancy Gun Gyokspa ngoshtaqs acha jukjes, panches kurti yotus stopschan duntang dunches tete, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abiyan tang jan jungi choksne pancheschan pomoguni pia, kamzde charji borte yotkan guni pantoks len tupches yotkan iskola shada zate nok, idus jalzumshkote yotkan gunla ama tang tugi kamzde transport borches lokel tupa juches iskolang hagu lamston gun salte nok. Akashwani League Yute Ladakh Sina Nasul Nimenang Lanji Sanjas Lapulin Jigyot Ladakh Sina Sul Ngato Chuzot Gu Nime Chuzot Nits Tangaskarma Ngapchunganga Pito Chuzot Ngatang Pito Chuzot Dun Tangskan Machungi Ka Santubin Jiginok Inna Tsoxla Shchitsox Pella Mikang Ladakh Sina Sul Gun Santub Jasyotenok Akashwani Lene Tana Sulton

0: हेलो हेलो
1: हेलो जुले, हेलो
0: हेलो जुले
1: जुले नमस्ते नाले
0: कसा हेलो जुले ने इन सु मोलते ले
1: या जुले वाह शाम ने कौन तो कंडा सब ले जु
0: कौन चोग ले खमजां जुक साले
1: या जुले खमजां जुक सानी या थम जुक वाह ठीक ने
0: कसा ठीक ठाक कौन चोग ले या कौन चोग ले दिनी का लु संजिन
1: या सब ले हिमी था चुलु साला ज़्यादा
0: हिमी सवा चुलु हाला ले
1: कसा कसा
0: कसा इलु संकन यंग ठोपा जुकते दाले
1: तंखे ठोपा में जाबिया
0: चिपो हलाले
1: कसा
0: कसा कुंजोले तेने निरा फरमाइश का हिमिस छवा चुलुंग संसे दा पुलंग निरा वचन मरले मुसनेन हलाले
1: जुले जुले
0: या जुले
1: या जुले जो

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम

0: करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने

0: परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media, New Delhi External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, Vinimay, in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said, the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.
3: कि लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
4: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट्स हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एड्रेसिंग दिस एज वेल
3: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: Defence Ministry has approved the establishment of a 250-megawatt solar power project with Battery Energy Storage System, BESS, at Sitapur in Uttar Pradesh. This system will be established on approximately 850 acres of vacant defence land.

0: Saka suksi ka yang ata luci tang se minggu ni yang ata tap saldo pati kan yang barbar yang ata yang tete kan emang pumas min kan sorry kangal mang pon pong leju se yang ata kamzi wo hama go alang ata stontok bat tang na tenis kangal pumani tete kan dasbu ata tenis stontok pumis min cesis kabri onuk pati pi yang tenis yang kazuk kazuk ata zotab ri kola zate tegon taksa zate sisir kari yot kia kazuk shunta
1: kasi ju sakat pu ata larak se sakat pu kazuk stakcha chakare nang jin tu shi juru helas sakhat pu dam ma sa woman immaturein ma tez maldan kan ni sakhat ji sai ji in jur galal ka o mang chat pu te ne ngata pesa yu te na peme risk pu yani ki se na particle size yon pal leta te size te room pu yon te kazu ngata gyar ul clay sa yon te ma jampo yon walal ka na 10 minute ke yang ta ston tok ma pu min te so saman pinga ta pesa chu som pa sa pi sa sherak chu te no te ne te se nan ku ga stop shuk sum ma nyun ji mane lu sa man halal khas करते ना ता स्टॉप शुक्सिना नाइट्रोजन जकनी नुस्पाव म खक्छन नि पेक्सन तोचिंग ता सस्पोसिस सल ना तोचि जदनचे सिपे तेते नुस्पाव बार बार नताय चुगो सके काउरलु दि लुत पेना म गलाय मत के नुस्पाव नाइट्रोजन बोलाले दसंग ता दस सपंग ता चोस्मा लुत कोलिन छोते न काउ नाइट्रोजन ते नाय वन का यूरेजन गलाले लुकर बिना ओते नाइट्रोजन म मपुय मत के ताते वो लुट पोचोस माँ वाता दक्षा बंद बंद चोस्ते ऑर्गेनिक चोस्ते तांगता नता रा रांची ने नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग का शिकोते नती री थोंस के चक्कर ने लुट कुन सालना खासकर नता रिक्पा उन नता ये नुकते ना चोला नता रलुट कुन नुकाल ले चालू दूर ना त्यों अंगेला नुक ते चोस लुट कुन ना ये नाइट्रोजन कंटेंट पो नाइट्रोजन मो मामा पो यों वाल सो पते वाता बार बार चुगिन जुस साला ते चुग ना सख्या दे नंकु सिर्फ नाइट्रोजन चिपो रलुट ना चालू दुगन छाचे मानो यंग स्टॉप शुगुन फॉस्फोरस ना पोटेशियम उन खाचा ने नुक ते उन मा खाचा ते रोस कानून ते स्टॉप चुक्सुन ते गता लुत पे ना बियत केले सो पर सामने गता लुत पुरान चुक्सते सखत पो शचन चुना तेने सखत पो देम बिना फटाइल सेट के का करना गता तोसकेत म गेले यन चुक्स
0: को जब सिकेल रेमन कुंदुन ता ते ओचे के जुस ना तने गता ए सनमे तुज ल ना तने गता ना शिगिन ना तुए गिन ना सनमे गिन ना तोन तो ला ले तीन ना तने गता ए ता बंगा से तुसी बंगबा से तोन ले जुंगा ता से ना डुस ते बोर ते तने ते उन सख ते बोर से सिरका उन ता दंग दिन ते उन मा न्यून सो जों पता ते गता ते ने सोनम लस कुंग ये चोस ना ते ने ता ते उन सख ते बोर से सी स्नोट जरा चोस ते ने का चोस गता ये कुरियुक छि ना ते उन बोर्गो छिन ते उन स्कूल से छि सनो
1: कसे जु साउन दक्षस पु मन खचन नो जु इन ना ता दक्षंग ता टोनस कुन माने एतिजम स्टोन तो कुन माने मबदा नो जु जुंखुर ला लगभग लगभग ता माने रिपा इंस्पायर थोंचे सि माने मंग छे दक्षंग ता सखत बु संग मा या गता गोरसंग लसुक सलते नो या गता ऑल तपसे ओली नगाता गुर्ते दुए जो सपो संगता तुस दंग गुर्जा बिजस्ते तने मम अपो स्टोरेज सिक दा संगता जुंकोर ला मेतनो इन न थतो थकोर गता युल बंपो न दंग योड्डो काना टोना संग दक्सा ताबा जा दतो खासकर नास कुम गता पुलास न यंग युल बंपो न शाम चोक सुन न ताबा नु तते पे गजे तेना ओ रिकमेंड चोत चीज गता समझ जस दागत नले सावन बो चाप सिक तु नंग जिन न गुस्काउ गता हुस मत कन जि हलाले चाप सिक तेना हुस हुस चोक छना तने रुलचेस जिक्सन मा पुजे न वाले सपो रुल न तने गता कोटका मा पिचेत के ते भी तंगता डिपार्टमेंट चो में सीट बीन्स न गता तंग छिसियो जना लले तने चक्स गता टीनी दबाई गता बैरल टाइप दि थाप छिक चोस्ते ते स्टॉक पर गता लुगिन छिस तने योक पर गता खाप पे से पिंचे छिक सिरका जिक तने योक तो निं पा चो छका मंग ल गता पिंचेस ला बिन न वाले ने सोमा गता खतो ने नानि छिकत पा तने योक ने पिन न गोजदो मे सब दा पिन न सोपते उन सीट बीन्स कु ने मे न गता यंग चला गे फे मखोला तने कल्टेस तेना गता last pe kyad na den den bina te ul dakche si pe na ta mal demu duk cirka den te na ko nga ta chai sik te us kampong lu du khala le so pa yok na chai khaw na na lu spo chat kyak te ne khato khaw na na lu spo biet kyak so pa lu spo ansa pe par ne gyuk ches pe jaste den nga ta te tonas kun kampo lu spo sang te rula mit kya ju so pa te cirka ut sit beans kun je na psad na te ne te kol go sa ju
0: kasas ku jab se kilo le mans kun dun ta tin ju pe ka te ju sa ma ol ju ta dang dring nga tang sang ma zik sin na ol ju te nga ta la da sin nga zik sat na te ne gam yul mang pe na tsunami chagla za ches ye sabat चगला जिंगबत बे चगला जाचिस गुन फंगा जाते लासना जि थोन यम बुंगा ताय लेट्स ऑल नसांग वन नास्क्यो जाते जुस साल दु गमयुर गुन नागा जिंग बच्चिस गुन माने फंगा साल दु गुन लिस दांग दरिन तुसि ना ता ताय थुलको रंग मिन्दा मिन्दा तु नोक ते लास्ट पंसा इ हारिस क्यो चेस नो ओनली जु जार चिनि सोंग सेंग तांग बा न्या चेस नो सोंग से यंग तुस तुसि के छुतांग चेस कसुक सि जुन ता सबत पंग उन ला तने इ चोग ला सजिंग बगे चगलास बुंगा ता फंगस मसाला ओनली जु माता मुतु दे बोर्सिस कावे कने गा तरा तने युली टीम्स नंग माता ते सोंग तोक ओनंग माता रा बतकन बुतने मा गा ता चुचन थे जाते नोक ता कसुक सि जुन निरा तने तुस समे तासुन कोला जाते तने गता चारलास मुन मुतु तेंगा ता जात गोशेस पोचाम सिकार सन सिक तुकासा
1: कासा जु तने गाजु गता जिंगबत पे लसिर न कुवा तने गता तुस तने गुर्जे स्टोन ते तने गता स्पेरा मा पोजी यंग सोमार गता तने जिक गोशेस खक सन छरो जु ता दक्सा तुस न तने गाजु गता स्कालास मा पोजी यो तने मिलक्स स्कालास यो तने मंग चत पोलाले काना तने दक्सा यरा जु चोला गम युल खक्तों समा तने लसने पिया या योंतानी पिया तने रा युल फास्तन गता जुंखोर गता सेंटर गशकोदा

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाई सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मैंने प्यार किया फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार है असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

लीजिए सुनिए अगला गीत, 10 फिल्म से उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ों में गीत। समीर के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे निहिरा की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। आइए सुनते हैं अगला गीत कांटे फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद राज ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कहो ना प्यार है फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत। सावन कुमार तक की आवाज़ के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या
0: सच बात तो यह है कि मुझे रात भर

0: Dasangi shirangi makmi kyok tungani degree me nanga film me lurik sanazats. Nga je Akashvani le ni shwen jik tang in. Kasata to sot sopi gilting ni ladak sana na sultang del chat sanazat.
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।

0: Ibo Akashwani le in kasatang yejarangai phunchuk wangmo nasna sul sanazat Ladakh si mimans kuni tu yundring yej milam ajujile ka gyangkhung apuche se chaji breakthrough during sonte nok sojung e junglam chinmo tang skaldin lonpo nitin gatkaris during zujile zuskur zatus Ladakh stang jammu khachul ojung aste mimans kunla namza chhme nanga Ladakh su yulejan kha guntang thu te burches chan tunnel sarjang elas dubinyot khanwa tashis delek jwazate nok During Yulgangpe Nangar Sujung Ichindak Zatkhani Charji, Pradhan Mantri, Surakshit Matritwa Abiyani, Loston Ashchupar Siya Zadin Jignok Yang, Jingbat Pagunla, Stendil Chani Jingbadi, Tsirkei Ka Laklin Joches Tang, Se Khams Dishkups the Borches Skola, Hagutang Chesi Pia Junil De Nanga, Khet Bachao Abiyan Juste Lasgul Shulin Jignok, Kasata Nasul Gunjib Salzate Sanazat. Yulil Dani Junglam Chinmo Gyalam Tangshkalden Ilonpo Nitin Gatkaris during Zujileka Gyangkung Puchesi Breakthrough Chachestang Yampo Migji Chinmo Chani Gyangkung Puchesi Dani Zu Sarjangi Las Char Ri Kak Chinmo Jik Dukte Nokmotok E Breakthrough Way Zujileka Kilometer Chuksum Lakzami Gyachin Mil Danika Gyangkung Puchesi Dani Zu Sarjang Elas Duptenok E Charji Wo Namtu Sangmenanga Ujungazdi Jamukachul Tang Ladaks Gyalam Gyute Tute Burchesi Pia Galchanjik Tenjiginok Zujileka Gyangkung Puchesi Charji Kalas Chatsang Dubachik E Gyalam Gyute Ladaks Yuli Janka Guntangyampo Lo Gangpo Tute Burtup Jesenok E Tus Zadgunanga Jamukachul Ujungazdi Shishkong Junba Manoj Sinhatang Lunpo Chenmo Omar Abdullah Gunang Tusa Zatenok, Sponbogunes, E. Charji, Natunis, Kola, Shada Zadinjik, Ibu, Yuli, Lanizu, Laskarenanga, Kakchan, Shadapsi, Naskaps, Jikte, Zatanoka, Pijaste, Namtu, Sangmenanga, Yuljons, Yulijan Kakuntan, Tute Borches, Bo, Muspo, Yustes, and Moltok, Zujileka, Yankung Puches, De, Katanijaste, Guni Namzirinsla, Gyalam, Yangyang, Gakshesne, Skaldin Tang, Mitubjes, Kalas Gun, Metkanchajes, Matsatpe, Motor College, Skaldin Gun, Mangatang, Tubjes, Tang. Yampo, Skorians Alaska Ritogang, Yargas Lepchesinok, Da Gyankungi, Laglusi, Sarjang Tang Juxti Las Gunika, Snangashkarti, Salches Tang, Lastir Shulte, Zujileka Gyankung Putkanbu, Sir Nangjin, Lastirinanga Kyung Tupa, Jujesitoga, Narshuk Stangyampo, Last Dulin Yotenok, Itus. Ladakh stang Jammu Khachuli Mimans Kunla, Dashes Delek Juazadin Jik, Sojung Ilonpo, Nitin Gatkaris, Isukmolazads.
1: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है क्योंकि यह टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है स्टेट ऑफ आर्ट है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे पर वर्ल्ड के इतिहास में भी यह नंबर एक पर जाएगा कि ये लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं
0: All Ladakh Central Government Employees Association is Tuesday jik at Tsokhspe Tungshi Sonam Nguru

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक लाइफ लाइन है। हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं।
1: इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टनल की ब्रेक थ्रू को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान रबतों को मुस्तकम करने और तरक्की को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कलीदी नवियत का करार दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस टनल पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह कश्मीर सूबे में गांधरबल जिले को लद्दाख के द्रास इलाके से जोड़ेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि राबता कार्य के प्रोजेक्टों से खित्तों की तरक्की मुमकिन बन जाती है।
2: निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी।
1: इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और शहराओं व ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का दिल से शुक्रिया अदा किया है। टनल की ब्रेक थ्रू का मुशाहदा करने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोनों यूटीज के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि टनल के मुकम्मल होने से नासाजगार मौसमी सूरत हाल के दौरान भी लोगों को आने जाने की सहूलियात दस्तियाब होंगी। नीज कश्मीर और लद्दाख में सियाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा होंगे।
3: कश्मीर और लद्दाख को सही मायने में साल के 12 महीने के लिए अब जोड़ दिया गया है। ये सपना यहाँ के लोगों ने बहुत वक्त से देखा था। इस टनल का यहाँ के लोगों पे, की जिंदगियों पे कितना असर पड़ेगा, चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी से तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुंचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन में हमें एहसास करना मुश्किल होगा।
1: श्रीनगर पार्लियामानी हलके से मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला मेहदी ने आज सर्किट हाउस पुलवामा में अवामी मसाइल की समाध के एक प्रोग्राम के दौरान उनके तरक्याती उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी लोगों और वफूद ने अपने कई मामलात मेंबर मौसू की दानिश से मिलाए और रूहुल्ला मेहदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि सभी जायज मसाइल व मुतालबात को हल करने के लिए जरूरी पॉलिसी मुदाखलत की जाएगी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा करके वहां मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो बैन महकमा जाति राबते के तहत काम कर रहे करके अयाम मुतबरका के दौरान निगहदाश्त, पानी, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइटिंग और दीगर सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाए ताकि आजादारों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उनके हमरा मेमरान असम्बली सलमान अली सागर और तनवीर सादिक भी थे। इधर सेहत व तिबी तालीम की वजह सकीना आयतों ने मुहर्रमुल हराम के पेश नजर अहम मकाम पर मुनासिब मकदार में तिबी टीमों और जरूरी अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने और इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिटों को फाल रखने की हिदायत दी। वजीर मौसूफा ने श्रीनगर में महकमे सेहत के सीनियर अफसरान की एक मीटिंग में आजादारी के जुलूसों में हिस्सा लेने वाले आजादारों के लिए तिबी निगहदाश्त की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने जुलूसों के जगहों और सभी मुतयन करदा रास्तों पर मुनासिब तिबी खिदमात दस्तियाब रखने के लिए एक सरगर्म अप्रोच के तहत काम करने की तलकीन की। इस दौरान महकमे ज़रई पैदावार और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार मुहर्रमुल हराम की तकरीबात का इनेकाद अहसन तरीके पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। वह आज डाक बंगला बारामूला में मुहर्रम तकरीबात के लिए की गई तैयारियों इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज दरियाए चिनाब के किनारे फुट्टू कोटली करखाल के मकाम पर 2,47,00,000 रुपए की लागत से तामीर हो रहे बांध का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों का सैलाब से तहफ्फुज देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर को खेलकूद के एक पावर हाउस में तब्दील करने पर जोर दिया है। वो आज जम्मू में

0: 2026-27 के मुजवजा स्पोर्ट्स कैलेंडर और यूटी भर में खेलकूद की तरक्की के नक्शराह का आला सतह की एक मीटिंग में जायजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने आज चंडीगढ़ में सीपीआई इंडिया रेंज जोन सेकंड की दो रोजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि विकसित भारत शहरियों को बाई अख्तियार बनाने और इदारों के कामकाज में बेहतरी लाने का एक अहम नजरिया है। उन्होंने इस सिलसिले में कानून साजों के रोल को भी उजागर किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज से इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू हुई। इस समिट में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मेंबर ममालिक भी शिरकत कर रहे हैं। 21 ममालिक के वज़राए ज़राअत, सीनियर अहलकार और ज़रई माहरीन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस के दौरान फूड सिक्योरिटी, ज़रई शोबे में इख्तिरायत, माहौल दोस्त काश्तकारी, ज़रई तिजारत और किसानों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक दीगर उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की एक मीटिंग के दौरान अमलाई जा रही स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन स्कीमों को मौसर तरीके पर अमलाया जाना चाहिए ताकि इनसे तमाम मुस्तहिकीन मुस्तफीद हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखला करीब से इन स्कीमों की पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाल सियाहती मकाम पर सियाहती सरगर्मियों की मौतली से हजारों कुंभों का रोजगार मुतासर हो रहा है। आज सियाहती मकाम नाराना के दौरे के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया और मरकजी वजारत दाखिला से मुतालबा किया कि नाराना समेत जम्मू कश्मीर के सभी बंद पड़े सियाहती मकाम को सयाहों के लिए खोल दिया जाए। इसी दौरान एनसी सदर ने बाबा नगरी वांगत कंगन जाकर हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी देकर वहां आलमी इंसानियत और जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने बेरोजगारी की बढ़ती सूरत हाल और दिलवेशों की खिदमात को बाकायदा बनाने में हो रही ताखिर पर तश्वीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने अहम मसाइल की तरफ से फौरी तवज्जो देने की मांग की है। जिला अनंतनाग में इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के पोनी की रजिस्ट्रेशन का अमल 25 जून तक जारी रहेगा। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे ने खबर दी है कि अभी तक पहलगाम में 6,500 पोनियों का इंदराज कराया गया है। इधर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतन किशोर ने इस साल की यात्रा को आसान और महफूज बनाने के लिए यात्रा के रास्ते पर और बेस कैंपों पर सभी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वो इस सिलसिले में अफसरों की एक मीटिंग में तैयारियों का जायजा ले रहे थे। आकाशवाणी श्रीनगर से आज रात 8:30 बजे सुबह खबर का तैयार करता एक खुसूसी प्रोग्राम नष्ट होगा। प्रोग्राम में अवामी बहबूद में इंजीनियरिंग बरादरी के रोल के मौजू पर दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट बातचीत करेंगे। उनके साथ हम कलाम होंगे डायरेक्टर न्यूज और शोबे खबर के सरबरा तारिक राठौर। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लाने से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शुद्ध मत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पदयात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मनुष्यात के खिलाफ एलजी का पैगाम,
1: ड्रग स्मगलिंग रेलवे तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक मारू गुलकार गुलजार अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हर एक बच्चा एक कीमती जान होता है। अगर ये ड्रग्स में मुब्तला होगा, ये खुद ही एक अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा परिवार होता है। ये सारा परिवार दर दर के ठोकरे खाते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे काम करते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ भी आपको लगे कि कोई बच्चा ड्रग्स के साथ मुलव्वस है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को कि वो उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि समाज में ऐसा नासूर पैदा ना हो।
0: सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में मनुष्यात के मुजर

0: सिल जेचेस पखेतनांगा का उल्ला बातते खेतनांग चप नांगा सोंसते यूट्यूब कने यंग लेक्चर्स ताचे सोक्सते गुंचवत पिले
1: कसाले तिनिया निस्का तिनियंग लबचुंग जत जाने तिन का टाइम बेखा तिनिंगते सिलचे सिनांग ख्वा देन बो फोकस पो मा छारागले
2: ngata night owl genialinga chanlamang pogorte dugna chapigma hawokan itu lushe sok charale
0: nga nga to ga gadi jinir gyat sukpe tedna time ka jaktang sila dyale chaz nga nga to ga ma dimag na chat pal
1: ka saletini lockdown yang campus yote tenengyang guni yang silche se tuspo kazuk sik pingste tenengyang gun siladle
2: school le yong setting nata बस घुमा ले चपेक नल सोच पाया ले तेने हूँ अच्छी तरह सोचना क्लास से ना उधर घुमा कंप्लीट चो दिया लेता तेने ची हम गए दो क्लास से ना हम गए ना उधर उनसे सिक्रिविजन चो दिया लेंगा राय में ना यूट्यूब तो ऑनलाइन लेक्चर्स ता दिया ले इन्हें बस ना हूँ वो कुछ चोट ले इन्हें डाउट्स उन क्लियर चोट ले ते बार बार प्रैक्टिस हम चोट ले
0: तेने ये खेत नंग चप नंग अलेप सिस्टिंग ना यूनिफॉर्म गुन स्पोर्ट्स ते फ्रेश अप सॉन्ग सिस्टिंग ना ये पत ते होमवर्क गुन ता ते छन ला माने डिनर रिस्टिंग ना माने चोमेत पिन्याले चजना गा डिनर रिस्टिंग ना पात सिलचे से आदा चिकमे दियाले होमवर्क ना असाइनमेंट गुन चोत पिन्याले तने मा खेतनांग यूट्यूब कने लेक्चर गुन स्टार्ट पिले
1: कसले तने लोपठुक जिक सिला चिक तने गख स्किल चिर गयोंग दुगले
2: छमे सम तंग दे तुसना डिस्ट्रक्शन छन मोता ना सोशल मीडिया ना गेम्स या सो ऑनलाइन छ मैनो हलाले तने ओदोनता एग्जाम में संगल जग खचिक नाला पिजुक चोस पिन आले कि सोशल मीडिया पूरा थेन पिन आले तेरे गास एग्जाम फोर्स चोस में कि डाउनलोड यंग इंस्टॉल मत जा पूरा अराय फोकस पोसिल चा सका बोर्स पिन ले
0: ते गंग ओतो सोशल मीडिया याले इंस्टाग्राम जगतंग ओतो इंस्टाग्राम का लू सरख पिन ले तेने ये खेतनांग ngarang district lu chuk tangarang ina juk micha chuk che se fe khetanang phone bo pat te ta aje gunni la jira chok pat ngarang na thakring burat pin yale nam jinga khetanang chapik mind fresh chok jo na nga pat philog ria chat pin le pat phone gunal ta me pin
1: ka sa le tin ngira gyuk slep sang mun la tin lop chan su su su se nang kwa time tang gos tin ti wo ka juk she gos te tang adle
2: ta exam le be sang ma ta chap पूरा इस गाला ले सैंपल पेपर सॉल्व चुचे प्रीवियस ये पेपर सॉल्व चुचे टाइम नो पा ले तेने गा चम्यान सोमा इस स्टार्ट चमेट पिन ले की का बुत सारे तो गुमा सिल मत सारो तो स्टार्ट चमेट पिन ले ते चम्यान गा गुमा चम सिल सारो तो पर रिवीजन चुट पिन ले तेने प्रीवियस ये क्वेश्चंस नांग ते सैंपल पेपर समा सॉल्व चुट पिन ले
0: तेने ये खेतना गा तपत आधा जिम्मे दे ले सिंपल पेपर नंग ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व चे से ये चंथुक ने नंग बुक थोरली रीडिंग ता दे ले तेने का वो इंपॉर्टेंट इनते संग मा हाईलाइट चोस्ते तेने नोट्स ngari नोट्स च दे ले ओते गुन मा फना रख
1: कसली तेने लोपठुक सिक्सोंग पिन फला तेने लोपटे नंग खा तेने प्रोजेक्ट चोक सला नो यंग असाइनमेंट रिक सला नो तेउ कजु शिया तेने छम चुगातले
2: तेने प्रोजेक्ट नसे स्कूल आता याले प्रोजेक्ट्स गुन जो समर वेकेशन आता स्पाल आले कि समर वेकेशन होमवर्क मा ता स्वाले खो आ जा टीचर गुन आ जा तेने चमन आ जा असाइनमेंट देना 15 डेज ना सच ट्राई टू स्पिन स्वाले तेने ओसा जो गुन प्रोजेक्ट ना असाइनमेंट गुन पूरा क्लास रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड क्या पाले ते फिर आ प्रिपरेशन आ छत पिनले
0: ते ओतो तंगायंग यो पिनले समर वेकेशन इन आता पिनले असाइनमेंट पो ओतेना कंप्लीट छ रख पिनले तेने ओतेना यंग रंगरा टॉपिक चूज चोचे संग पिन बायले ते तेना रंगरा इंटरेस्ट यतकन बो मा चोस पसंग तेने ते कने मा नॉलेज वॉलेज थोर
1: कसाले तेने गतांग सिलचेस चिक पो मानपा यंग सोशल लाइफ का दंग दिरिंग गतांग मा दुगा नो हलाले तेनांग यंग पो तेने रंग रंग काजुशिया मैनेज जदत यंग ची यरगेस सोंस तेरा yang chi macharak te okazu shanya gun takche jatadle
2: socialize na tangi social circle chung chek ma met sale ab close friends us khachik ma met pale lekin te fa chung social circle chung ari bolna sape ma phanche tuk chrale social development jong zena ta ale ngi thopa gyal ari gazu khriot na na ji circle bogu shud na ona sabse na chi development pa chara ale ale te ngi thopan se gyal ari gut ne sale nga pura library yong sil yang pa silen zir kan gut ne sale te ne thopa gyal ari na nga tang phanera pale
0: nga ta mangpo rik po sports hit thoga chat pine ale jam chik free type thop na nga sports cha chat
1: ka sale te nga tang bar ya silin madu jani te ne rang na rang a motivate ka zo chochesle ta nga sil go she sino khala jete
2: सिलियन मडो सना ता याले गुमा ता बस म्यूजिक न्यान नंग याले या फिर पिलोट चा छनांग सबिक ना सुत पिसोले नि चे तास तास टेस्टिंग ना सबिक फ्रेश चर पाले तेने सिंगिन चोरल मिडो खान जता मत समले
0: ना सिंगिन मडो जनेगा फिलोक विलो सोंस ते ngari khi gun yam poyang spar cha pinale टेस्टिंग ने खेतनंग यंग तेने यंग संबे गुआ रख पिन की ठोपा गुनि सिले नि दो तांगा सिल गोशा नो समसे ते ओते ओ मा मोटिवेट छ
1: कसले तेने ने निस्के तेने जुनु गुना तेने गतांग सिल गोशे सम खक चांदो छुंजिक मेसे सिक्सल नाले
2: ये जूनियर को लता है ना मैसेज होता है कि मैं उसे फोर्स मत आले कि एग्जाम छन में एकदम आना पहले ट्वेल्थ बोर्ड्स का बोर्ड से ना ट्वेल्थ में मत आ सा ले तेने एग्जाम प्रेशर मत आना आएगा कि सिल हो सा चीचो चोक दे बस रामा पूरा हार्ड वर्क चोस ले फोकस दुख इन्हें गिना ठोपा उन गैलरी चोस बस वो ना मेहमत लेंगे
0: तेने जूनियर गुना एडवाइस शिख जेना था चमथुक न्याना दक्षा ने सिलचे से कोशिश चोजिया लेता लास्ट मोमेंट का बोर ना सिंग नंगतांग रहा प्रेशर यों से नंगतांग रहा टेंशन यों से नन्मा सिलचे छामिनु गया ले तेने दक्षा ने चमथुक न्याना क्लास ना ध्यान तांग से दक्षा ने सिलचे से ट्राई चोज ले
1: कसाली तेने न्यान इसका तू स्पिंस्ते यूनु गुने डिग्री में नास के चोज को आथुक जे छे जुले
2: जुले
1: कसाता इस तिंग ने संकलांगे सिफिया लूजिक संचसला फुली

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड 19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करें।

0: सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5,00,000 रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक

0: कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a

0: into legitimate trade in the vision of all-round development of border areas where migration was the biggest problem. The land ports have made a very important contribution in addressing this as well.
1: The Defense Ministry has approved the establishment of a 250-megawatt solar power project with Battery Energy Storage System, BESS, at Sitapur in Uttar Pradesh. This system will be established on approximately 850 acres of vacant defense land. This is the first of its kind project undertaken by the Ministry of Defense involving the development of a large-scale solar power generation facility with integrated BESS support on defense land. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Today, we focus on the measures taken by the government towards health services.
2: India's health system is now more accessible, affordable and quality-driven. In 2018, Prime Minister Narendra Modi launched the world's largest health insurance program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under the scheme, free health insurance up to 5 lakh rupees per family per year is being provided to socio-economically deprived families. More than 44 crore Ayushman cards have been created and treatment worth over 1 lakh 80,000 crore rupees have been provided. In October 2024, the government launched Ayushman Bharat Vaya Bandhana, extending health insurance coverage to all senior citizens over 70 years. Talking to Akashwani News, Rohit Singh of Delhi said, with this card, he can now avail treatment at private hospitals as well.
3: My name is Rohit Singh with the Ayushman card. I will be able to get treatment in private hospital for myself and my family. With this, my family will stay completely healthy and will able to get good treatment.
2: The government has also established 1,86,000 Ayushman Arogya Mandirs to provide primary health care at every neighborhood. The Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadhi Pariyojana also providing quality assured generic medicines at significantly lower prices than market prices. Talking to Akashwani News, Dilip Kumar, a resident of Bihar, said that the medicines at Jan Oshadhi Kendras are available at very low prices.
4: If the medicines were not from the Jan Oshadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too. And my money is not being wasted either.
2: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इक्तसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकतसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
6: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज़्यादा काबिल रसाई कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक इकतसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
7: फायदा होगा क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
6: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नजदीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
5: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नजरियात का तबादला किया। वजीर आजम ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुजाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल जाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम मोदी इतवार के रोज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम से कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैनुल अक़वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निज़ाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निज़ाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नज़रिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
8: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
5: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وینیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے. یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے, جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے. حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی کی جانب آسان منتقلی کے لیے 95,692 کروڑ روپے کا عبوری بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی ہے. وی بی جی رام جی قانون ملک بھر میں 1 جولائی 2026 سے نافذ ہو جائے گا. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی ترقیات کے وزیروں کے ساتھ آج نئی دلی میں ورچوئل میٹنگ کے انعقاد کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے سبھی ضروری تیاریاں کرنے کو کہا ہے. برکس زرعی کانفرنس آج سے مدھیہ پردیش کے اندور میں شروع ہو گئی ہے. اس کانفرنس میں 21 ملکوں کے نمائندے یکجا ہوں گے اور دنیا بھر میں زراعت کو درپیش کچھ اہم ترین چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے. کانفرنس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے جس کے پاس اس سال برکس کی صدارت بھی ہے. 13 جون تک چلنے والی برکس زرعی کانفرنس کے دوران خوراک کی یقینی فراہمی, زرعی تجارت, ماحول دوست زرعی طریقہ کار اور زراعت کے شعبے میں جدت ترازی جیسے موضوعات پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اس ماہ کی 21 تاریخ کو نیٹ کے دوبارہ امتحان منعقد کرانے سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا. نئی دلی میں این ٹی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ سوالیہ پرچوں کی تیاری سے لے کر امتحان کے بعد کے تمام مراحل تک مکمل رازداری برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. جناب پردھان نے کہا کہ اس میں یہ یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ امتحان کے مواد درست طریقے سے بر وقت امتحان کے مراکز تک پہنچیں. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں حکومت پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے ذریعے حمل کے دوران خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو لگاتار مستحکم کر رہی ہے. جناب نڈا نے آج نئی دلی میں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر پیمانے پر تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہی. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور کرناٹک کے بعض حصوں میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بہار, کیرلم, ماہے, کونکن, گوا, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکال اور تلنگانہ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. محکمے کے مطابق شمال مشرقی ریاستوں کے بقیہ حصوں میں جنوب مغربی مانسون نے مزید پیش قدمی کر لی ہے. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے آج رنگیری دمبولا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سہ فریقی سیریز کے افتتاحی مقابلے میں میزبان سری لنکا کو 8 رن سے شکست دی. بھارت کی جانب سے کپتان رتوراج گائیکواڑ کی شاندار سینچری نے ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 277 رن سکور کرنے میں اہم رول ادا کیا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا، اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
9: نجی آکاش وانی لینی چنجک تنگ ان سانی چھوٹر گودنگ پھیت شادو کاستا گروپ ڈولما تنگ ٹھوپا گنے سلکنے جنگلورک سانجات۔

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नक्सली चिरांगे गुरुप टोलमातंग ठुपागुने सलकने जुंगलोरिक सनाजेट्स गजे आकाशवाणी लेने चुंजिकतांग इन साने चुसोत शुचादु एनाबोतांग यंपु गजे तेरिंगे डिग्रेम निस पाबोथोन डिग्रेम तंग पेफियास गत वचसोत दुंतंग स्कर्मागी शुसाई का यंग चलें तेते सुप्पा गजा गुंस्पा सलाजेट जुले जय हिंद।